शब्द है सत्संग, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कैसी कला है गुरु नानक दी, इको पंक्ति विच इतना कुछ, जिमें कहिंदे हुंदे कहावत है कि कुजे दे विच समुंदर नूं बंद कर देना, अद्धी पंक्ति दे विच कुछ होर ते अद्धी पंक्ति विच कुछ होर, पर भरपूर अर्थ कहन दा ढंग, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, सारे जितने भी गुरु लोग सौ सियाणपां इको मत मूर्खां आपू अपनी, जो पंचे होए हुंदे हन सब दी ऐसा ही है। कबीर साहब ने कहा, कबीर सब ते हम बुरे, हम तच पलो सब कोए, असी ही बुरे हां, मैनू छड़ के सारे भले हन। अगर ए आ जाए गुरु के सिख दे अंदर अते साडे सब दे अंदर, ते बहुत सारे झगड़े ते इत्थे मुक जाने आ, कोर्ट केसां दे विच कोर्टां दे विच केसां दे विच कज्जल कुआर होण दी लोड़ ही नहीं पैनी। जदों इह भावना आ जावे फिर उतारदा इह भाव आ जाए, इह मत आ जाए, फिर उह तार लैंदा है, उही तारदा है। आओ इन इस शब्द नूं प्यार नाल गाइए, असी गावांगे दो चार बार सुनो, फिर ये पकड़ विच आ जाएगी। सिंपल ही है ट्यून, ये जो कंपोजिशन, ते फिर सारे ने गाना, सारे मिलके प्यार नाल गावांगे ते आनंद ते आएगा ही।

सतगुरु सब नो गुरसिखी दी दात अमोलक हीरा सब तो उच्ची सुची जो कुछ कोई बख्शिश है ते गुरु दे चरणा दा प्यार है ओ मिले असी दुनियादारी दे प्यार विच हां किसे दा किस चीज नाल प्यार किसे दा किसे नाल किसी ही कोई कोई मन जनमानी हिक तो ऐसी दात मिले इस दे इस तो बिना छुटकारा नहीं होना ये नहीं कि कोई चॉइस हैगी है कि कोई होर चॉइस हैगी है कोई चॉइस ही नहीं है आना सब नू सानू इत्थे ही पैना भावें जितना मर्जी जितने मर्जी जन्म भटक लईए ते मिटना पैना गुरु दे चरणा विच आके ये साडी मर्जी है कितनी देरी लानी कितने जन्म लाने आओ भुलां दी खिमा

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाओ निध आवै ताए। सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौफां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणदिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाह। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नेतानियां दे तान नेओटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाजर नाजर प्रतख सतगुरु जी आप जी दे चरण कमला पास अरदास बेनती है। आप जी दी महान किरपालता दा सदका संध्या वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर सुंदर दीवान सजे सजे होए दीवाना अंदर आरती आरता शब्द कीर्तन इतिहासक विचारा छे पौड़ियां श्री आनंद साहिब जी दे जाप होए अगाध बोध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों आप जी दा जस गायन करदियां तो बेअंत भुला हुईयां हन महाराज असी खते बहुत कमाव दे अंत ना पारावार हर कृपा करकै बख्श लै हो हौ पापी वड गुनहगार अंतर जामी दाता जी आप जी ने बख्श लैना बख्श लैना बख्श लैना अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फलादेश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नू अपने दरो घरो नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके कृतार्थ करना
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਰਘ ਆਰਬਲਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ।

सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनाओ सुनहु एक दीना, देहो दर्श नानक बलिहारी, जियाड़ा बाल बाल कीना, आस प्यासी पेर कैताई, ज्यो चातरिक बूंद देरे, कहो नानक जियाड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे, सो कहो टल गोर सेविया, अहनिस सहज दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसहु कुरसहु तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह, सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे

गए मोका उकार संतन केतु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तुद आ गए अरदास।

Mary word. अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निध आवै ताए। सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय। दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है। समुची समाप्ति तो उपरंत आप जी दे सुख आसना दी सेवा हुई है। नाल नाल सोहिला साहिब जी दे जाप हुए हन। बाणी पढ़दियां तो सेवा निभाउंदियां तो हुईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी दा फला देश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा। दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी। सब नू अपने दरो घरो त्रुट के नाम दा रंग साधुआं दा संग निश्चय अभंग दी दात बख्शिश करके किरतार्थ करना। चार पहर दिहाड़ा आप जी दे भाने अंदर बतीत होया है। आई रैन अपने भाने अंदर बतीत करवाउणी। अमृत वेले दे जग ने बख्शिश करने ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜ ਆਸਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ

0: देख तेग देख तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे
1: काली बाबा भूला सिंह ने मानु बाबे
0: अकाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच पै आले
1: गावन तुदनो रतन पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले
0: गावन तुदनो जोत

0: जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास।
1: जो सतगुरु सर्व संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास।
0: जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तर मस्तक लिखिया लिखास।
1: धन धन सत संगत।

0: सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।
1: आप हाथ है मुझे उभरी है, मन काल का त्रास निवरी है।
0: जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा।
1: राख ले मुहि राखन हारे साहे।

0: सब जगत बनायो देव दत्त जक्षण उपजायो
1: आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार ते सही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी
1: सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरण को पर मोबद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत भले पुरे की पीर पछानत
1: जिंदगी ते कुंचर्या स्थूला सफर कृपा दृष्ट।

0: संबत 1785 8703 कहिजा
1: पादरम सुदीय समीरो वाला तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा
0: एत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पूप

0: ना गणेश है प्रथम मनाऊं के सुन बसन कब हूं ना ते आऊं
1: कान सुने पहचान न तिन सो लेव लागी मोरी पग इन सो
0: महाकाल रखवार हमारो महा लहू मैं किंकर थारो
1: अपना जान खुलो रखवार बाने गहे की लाज बिचार
0: अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया
1: देख देख जग मैं दो चले राखा मह और न दले
0: तुम मम करो सदा प्रत पारा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वैताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होना जी सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारा चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई। तेग वाही देखिया डट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े। आरे नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा ना निभाई। तिना दी तिना पुरातन अते वर्तमान समय दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फतह बिद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मानी वा मत उची मत पाता रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। सुमू गुरद्वारिया गुरधामा दे खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो जी। हे निमाणिया दे मान नितान्या दे तान न्योटिया दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु। आप जी दे हजूर रहरा साहिब जी दे बाणी दे पाठ कीते गए हन। पाठ करदे अनेका प्रकार दियां गलतियां भुलां चुका होईयां हन। अनजान जे बच्चे समझ के माफ कर लेना। पवित्र हुक्मनामा बख्श के संगत नू निहाल करो जी। अखर वादा घाटा पुचक माफ करनी सरबत दे काज रास करनी। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम च दया वै नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चतर चक्र भुगते स्वयं पव स्वपंग सर्वदा सर्व जगते दुकालं प्रनाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव स्वपंग सर्वदा सर्व जगते दुकालं प्रनाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। सो कोह टलगर सेविया एहन सुसहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूरे अरस।

दाता पार ब्रह्म प्रभु स्वामी सगले जीय किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी करन करावन हार प्रभु।

0: जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी, गुरु सवारी, साध संगत जीओ, ए संत दशमेश गुरमत सेंटर दे बच्चे जिन्हां ने आप जी नूं श्री रहरा साहिब जी दा पाठ ते आरती दा कीर्तन सरवण करवाया। हुण भाई विक्रमजीत सिंह जी आप जी नूं कीर्तन सरवण करवाउणगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।